का सिते डी या मलवा रे पिर वो रूम मा द पा गरवार वे ये ना ने कुरुगा रूम मा रिला द मा का लन उर पुक कलैवा।